चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल। छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल। छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल। छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल।

नन्नी चींटी के पर में हाथी सारे बांध दिए, नन्नी चींटी के पर में बैलूनों की छतरी से उतरे परियों के घर में।

ताली ताक धुम ताक ताली ताक जम ताक झाला आंबो ताक झुके ताक ताजे ने तू ताक नाक ताक झुम ताक नाक नाक झुम ताक नाक नाक झुम ताक नाक नाक झम तारी ता जग तारी ता जन जाने को कुदारी दाबु तारी के ताली तारी ता जग तारी ता जन जाने को कुदारी दाबु तारी के जम तारी

एक बार एक सेठ जी को व्यापार में बहुत घाटा पड़ जाता है। वो उदास रहने लगते हैं। धर्मपत्नी कहती है कि स्वामी, ऐसे चिंता करने से कुछ नहीं होगा। मेरा कहना मानो और आप भोले भंडारी की कांवड़ लाकर पावन गंगा का जल उन पर चढ़ाओ और हमारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सेठ जी अपनी धर्मपत्नी की बात मानकर पैदल चलकर नीलकंठ महादेव के दर्शन करते हैं और हरिद्वार से बम बम की जयकार लगाते हैं। कांवर लेकर शिव का नाम जपते हुए महादेव पर जल चढ़ाते हैं तो भोले बाबा उनको दर्शन देकर उनके सभी कार्य सिद्ध कर देते हैं। तो आइए सुनते हैं ये भजन।

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Radio. Radio.
3: मैंने तो नहीं पी, मैं साकी बनी थी, पीने को तूने पी,
4: जा जा जा रे

0: उजाला रेडियो, वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन। वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है। चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन उजाला बिंद नाउ। उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में, काबल के जरिए, ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर। जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए। उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है। काम में लाए उजाला रेडियो। उजाला रेडियो आपके साथ।
1: चलती है क्या नौ से बारह,
2: You are. Uchala Radio Headlines. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken. Er komt veel rook vrij en een bovenliggend woongebouw is ontruimd. In de Haagse wijk Ypenburg is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen op een kruising. De aanhoudende hitte blijft het treinverkeer verstoren. Door schade aan meerdere treinen verwacht de NS ook maandag en dinsdag hinder. En voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur John Bolton heeft schuld bekend aan het doorspelen van geheime informatie.
3: En tot zover de headlines op Uchala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवराजे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl, 15 आवराजे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके हैं Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio।

0: तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे अब हम क्या देखे। लता जी एंड किशोर कुमार, फिल्म कभी कभी का गीत आप सुने।
1: मेरी जान
0: ठहरो मेरी जान, एक बार फिर किशोर कुमार एंड लता जी।

0: अब वादा करो कि जहां तुम हो वहां मैं भी हूं, आ गले लग जा फिल्म का नाम, और गाने वाले किशोर कुमार एंड लता जी, उजाला रेडियो का प्रोग्राम को हम बना रहे हैं आपके लिए। तो अगला गीत सुनिए।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो
0: नहीं।
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

शानदार सा सिलेक्शन पेश किया गया है उजाला रेडियो के जरिए। कैसे बताएं क्यों तुझे, क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए, बातें दिलों की देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए, तू जाने ना, तू जाने ना। It's the rocking sensational, the leader in broadcasting. You are Ujala Radio का पैगाम, मिले जुड़े संगीत आपके मध्य में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आपकी खिदमत में शहीद गुलजार हाजिर है और ऐसे में डिस्को किंग बप्पी लहिरी की आवाज। वारदात फिल्म का नाम, सन 1981 का फिल्म, 1981 का फिल्म। दिन हो या रात, के फोन का नंबर आप नोट कर लेना, आज नहीं तो कल के वास्ते आपको जरूर काम आएगा। 020-409-0807 रेडियो के क्षेत्र पर हर काम काज के वास्ते आप डाल कर सकते हैं। सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह में 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक 020-409-0807 दिन हो या रात।

जब की बातें हुई है दिस कुकिंग बप्पी लहरी की, तो एक और सिलेक्शन हो जाए इन्हीं की आवाज में, द डर्टी पिक्चर नामक फिल्म से उल्लाला उल्लाला।

अजी छेड़ेंगे हम तुझको, लड़की है तू बड़ी बुम्बार्ड। उल्लाला उल्लाला फिल्म का नाम द ड्यूटी पिक्चर। संगीतकार विशाल शेखर और स्टेशन यू आर उजाला रेडियो। तू जाने है तो मिले जुले संगीत में हम आपको अब एक गोल्डन ओल्डी सिलेक्शन सुनाने वाले हैं। फिल्म का नाम नौ निहाल। मेरी आवाज सुनो, प्यार का साज सुनो। सुरो का बादशाह मोहम्मद रफी साहब।

लुत्फ आप उठाते ही रहना यूआर से, क्योंकि आप ही की मनोरंजन के वास्ते मिले जुले संगीत पेश की जा रहे हैं प्रोग्राम के दौरा। ये सिलेक्शन भी अर्ज है रेखा भरद्वाज और सुनिधि चौहान की आवाज़ में है।

तो एक तेरा बलमा एक मेरा बलमा सेम सेम बट डिफरेंट नजर के सामने जिगर के पास नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है जाने मन क्या वो तुम हो फिल्म आशिकी से आइए मिलकर सुनते हैं नजर के सामने जिगर के पास वेरी रोमांटिक सॉन्ग युवाओं के सभी श्रोताओं को एक शुभ दिन प्रकट की जा रहे स्टूडियो से आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं आप खुश रहे और सलामत रहे प्रोग्राम को बेशक सुनते रहना और अवश्य सुनते ही जाना

फिल्म का नाम बधाई हो सजन बड़े सेंटी। मजेदार सिलेक्शन, आइए मिलकर सुनते हैं सजन बड़े।

0: देव नेगी और हरजोत कौर की आवाज फिल्म का नाम बधाई हो सज्जन बरे सेंटी।
1: उजाला रेडियो रेडियो तू जाने है तो
0: और ऐसे में हो जाए एक और सिलेक्शन फिल्म का नाम द डर्टी पिक्चर। इसी फिल्म का बड़ी रोमानी सिलेक्शन मेरा इश्क है सूफियाना।

ओ तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दिवाली है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क कोई, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना। राहत फतेह अली खां की आवाज में एक सिलेक्शन हम आपको अब सुनाने वाले हैं।

राहत फतेह अली खान की आवाज यादा तेरी यहाँ ऑन द ऐसे कुछ हंजू ले लेके मिले जुले संगीत मिक्स मैक्स सॉन्ग्स आपकी खिदमत में उजाला रेडियो यूआर के जरिए पेश किए जा रहे हैं आज इस पैगाम में। और ऐसे में फिल्म का नाम सात खून माफ डार्लिंग ए डार्लिंग उषा उत्तुप और रेखा भरद्वाज की आवाज़।

It's the rocking sensation. You are उजाला रेडियो का पैगाम. शहीद गुलजार आपकी खिदमत में हाजिर है. अभी एक या दो सिलेक्शन हम आपको और सुनाने वाले हैं.

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा

7:07 ja, 9 minuten gezet. Oké, ja, het moet zijn 9 minuten over de klok van 7. Ujala Radio, hey, meri pyare, sunne walo, aur main hoon Ratan Ram Dulare Pandey. जून का ये गर्मा गर्मा महीना जो है आखिरी शनिवार है 27 जून 27 जून तो यहां विराजमान रहा हूं मैं आपका सेवा करने के लिए और वो भी लेकर प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर लाइफ एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतनाम से ये प्रोग्राम फिर एक बार हम बनाएंगे सजाएंगे आप सभी के लिए और आप सभी के साथ रात्रि में 12 बजे तक 5 घंटे लगातार विद ब्यूटीफुल लेटेस्ट एंड ओल्ड लोकल सॉन्ग्स। शुभ रात्रि आप सभी को हम कहते हैं और तहे दिल से स्वागत है स्वागत है स्वागत है आप सभी का ऑन डांस द हिट। उम्मीद और आशा करते हैं कि फिर भी बहुत तो गर्मी है लेकिन फिर भी आप एंजॉय कर रहे हैं। और वीकेंड है मेरे प्यारे सुनने वालों, बारिश होने वाले हैं तेज और कल भी और इस वीकेंड के बाद टेम्परेचर जो है दिख रहा है कि नॉर्मल पर जाकर होंगे। थैंक गॉड। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं रतन राम दुलारे पांडे हूँ और आप सभी प्रिय सुनने वालों को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदर पर से। आपका सेवा करने के लिए बहुत बेचैन और बेताब हूँ। वंद सात रखावंत इस मुइलक, मौका मिलते हैं तो आपका सेवा करने चले आते हैं लेकिन ऐसा भी है कि हम हफ्ते हो जाते हैं कुछ बीते ताकि हम आपका सेवा कर सकें। Vandaag ben ik er en volgende week ben ik er ook. En volgens mij daarna een aantal weken op de zaterdagavond. हम सिर्फ शनिवार की बात कर रहे हैं, dan zal ik er niet zijn. मेरे प्यारे सुनोरों, ये प्रोग्राम Saturday Night Fever फॉर्मूला आप सभी को तो मालूम है। हमारे ये प्रोग्राम के दौरान जो लोग भी ऐप करेंगे स्टूडियो में और वो भी 020-363-0808 पर उन सभी के नाम से 8 बजे की इश्तिहारों के बाद एक नगमा उनके नाम से चलेंगे। ये मग अलीन ये नाम दौर गेवे गीन टिटल्स और आप कहां से ऐप कर रहे हैं एंड या ये मग वेल सेगे फन ये विल अ स्नेले नंबर ऑफ अ रुस्टिगे नंबर टू जाने तो दिस 020-363-0808 यू आर के स्टूडियो का व्हाट्सएप है। और है आपके कामों कांच मेरे प्यारे सुनने वालों, आपकी फरमाइशें जरूरी खबरें मौत की खबरें जानकारी इंफॉर्मेशन जो आप प्राप्त करना चाहोगे तो आप सोमवार से शनिवार मान रख तो में सैटरडे सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे फना फिन ओखन 3 यूर तो तेने मेरा 3 यूर आप तार कर सकते हैं उजाला रेडियो के दफ्तर को 020-409-0807 या तो आप लगातार 24 घंटे आप मेल भी कर सकते हैं आपके कामकाज के वास्ते info@ujala.nl। और मेरे प्यारे सुनने वालों, सोशल मीडिया पर उजाला रेडियो भी एक्टिव है, इंस्टाग्राम टिकटॉक फेसबुक और कौन कौन है, हाँ हाँ यूट्यूब पे भी है। पी अबोनेर नहीं तो मुझे अबोनेर अबोनेर ऑफ यूट्यूब फन यू आर तरह तरह के खूबसूरत नगमाएं वहां जो हम अपलोड करते हैं आप उसे सुन पाओगे। और मेरे प्यारे सुनने वालों, गेट कनेक्टेड टू उजाला रेडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर टिकटॉक पर जो भी सूचनाएं हम वहां पर छापते हैं आसानी से आप पढ़ पाओगे, किसी को टैग कर सकेंगे, आप अपना कमेंट्स दे सकते हैं, आप खुद ही उसे शेयर कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे सुनने वालों, आपके व्हाट्सएप का इंतजार में हूं
और मालूम रहे कि 8 बजे के बाद आप सभी के लिए गीत हम चलाएंगे एंड दैट इज अ फॉलो हॉर्ड ऑफ हम बिन को मंडे एपियस हमेशा की तरह। तो हम प्रोग्राम को आराम करते हैं यहां से मेरे प्यारे सुनने वालों, एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय योर सैटरडे एंड एंजॉय यू आर तू जाने तो

0: जिया प्यार मांगे जिया आसमां से ऊंचा, या अमोय हो एक पुराना द सिंगर ऑफ रोमांस बीस महावीर की आवाज में। मेरे प्यारे सुनोलो, स्वागत करता हूँ आप सभी को फिर एक बार। आप ही का मनचाहत और फेवरेट स्टेशन है ये उजाला रेडियो। मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे और लाइफ एंड आर क्यू आर के स्टूडियो रतन राम से आज फिर एक बार मौका मिला है इस शनिवार, इस गर्मी गर्मी शनिवार को आपका सेवा करने का। साढ़े 7 बजने में 10 मिनट बाकी है मेरे प्यारे सुनने वालों, और सैटरडे नाइट फीवर का फॉर्मूला जो लोग ऐप करेंगे उनके नाम से गीत हम चलाएंगे, नॉट अ ब्रेक फन अख्तूर। और आप हमें ऐप करेंगे ऑप 020-363-0000, और ये भी बताएंगे विलियन स्नेल नंबर और विलियन रुस्तख नंबर, तू जाने दो। विनेश छेरी को पेश करता हूँ फन फॉर्मेसी नो मर्सी।
1: हम तो पी अब दारू,
2: क्या हुआ?
1: हम तो पी अब दारू कसके है हमार कमाई, अरे हम तो पी अक्कड़ हमें कोई का कर पाई
3: नमिता किन सो बोई

हम पिया बकस के दारू कोई का कर पाई अतिस मैन कमाई याद अतिस बाल सो भैया जो जिसके कमाई उसी में से वो पियाए और खाए मारालस मत मात तो खाइए और पिए सब मत मात और फिलहाल वीकेंड है मेरे प्यारे सुनो वालों जब वीकेंड हुए है तो मिसल कुछ चटक मटक बने हैं और कुछ एक इतनी मेहनत वार मवे ड्रिंक यू डन विस्की एंड सो एंड सो डिंग दिया और ना गर्म हो जाए फोकस में वेल है दू ये तो नहीं हम भी चटक मटक खाए ला यार ढेर पानी यहाँ है और एक आध गिलास में पानी में जो है सितरून और आइस ब्लॉकिया और एक टिक्की में ऐसे चबायला अंसतीच एंड नेचुरल मेथ सब बोले सतीश और पिंदा सॉस मेरे प्यारे सुनो लो आपके व्हाट्सएप के इंतजार में है 020-363-0008 यू आर के स्टूडियो का व्हाट्सएप है कुछ लोगों ने ऐप किए हैं और आप सभी के लिए जो अब तक ऐप किए हैं आप सभी के लिए नाद क्लॉक फन आख हम गीत चलाएंगे यूली से ताल माले इर्स्ट ब्लॉक के फन आख तो तमेत नहीं है 020-363-0008 मेरे प्यारे सुनो वालों Jij bent alles, alles ben jij voor mij. Arre papre, Ashley Esme, pish karta hoon. Ja.

टूटी-खुली कितना प्यार है तो ये 42 फॉर मैं यार अच्छे ख्याल ही अगर किसी को आप बेहद पसंद करते हैं दिल फिदा हो जाते हैं और उसके बिना आप जी नहीं पाते हैं और अगर सनाम में तुम्हें मिला है और आप यहां रहते हैं और पखे मन मुझे आए तुरख एंड अफस्तान या अगर प्यार हो दान दूर दात नतूलक आल्टाइट वेल वात मैचिया एशले एसमी की आवाज में मेरे प्यारे सुनने वालों प्रभास कली जी को हम पेश करेंगे और ये महाशेर कहते हैं कि सो ड्रामा यार चलो सुनते हैं इसकी कहानी भी

Ja, er zit wat kern van waarheid in Prabhas Kali. Ki duniya mein bahut drama hai. मेरे प्यारे सुन लो, ये उजाला रेडियो है और धीरे धीरे धीरे धीरे हो रहे हैं 4 मिनट ओवर द क्लॉक फन हाल फाख सरे 7:04 ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं. आप ही का मन चाहत और फेवरेट स्टेशन है ये सैटरडे नाइट फीवर विद ब्यूटीफुल लोकल्स और वो भी लाइव एंड डायरेक्ट क्यू आर के स्टूडियो रोटरडम से. अगर युगो युगो है और अगर अपना मूडी जो है आप थोड़ा सा ढिल्ला करना चाहेंगे, हम भी चले कर खा तो आए. मौसम तो बहुत खूबसूरत है. खा लेकर फार या फार लेकर फार मेटल्स बीरन बोचे तू जाने तो. रिक हेडू और खिलियो अलबर्ग फन फॉर्मेशन रियल नेशन हियर ऑन यू आर

Ja, Wonderboy, Rick, geh du mir die Perise in aller Ohre. Regilio Alberg. Waren, mashup, ik dan nieuw. Vers van de pers. Real Nation formatie. Ja, mooi jong talent. Rick, geh du, hè? Or ik jo oor talent, hè? Unka nagma. Jo kuch hafto bite, hè? कुछ हफ्ते बीते हैं ये गीत रिलीज हुआ हमारे रनिया चलो पेश करता हूँ विशाल हीरा विद हीरा प्रोडक्ट्स

हाँ, हमारे रनिया तो से बतावे हम बतिया विशाल हीरा मेड फार्मेसी द हीरा ब्रदर्स मेरे प्यारे सुनो लो हीरा निवा व्हाट्सएप का इंतजार है आपका मेरे प्यारे सुनो लो 023630000 और आपको मालूम होना चाहिए अगर आप ऐप करेंगे इस वक्त तो आपका गीत ट्वीट ब्लॉक में हम चलाएंगे नाम लग तुस नीख एन तीन आप व्हाट्सएप करेंगे 023630000 पर गिंग टिटल्स दोरगेवे बस यही आपका नाम आपका शुभ नाम आप कहां से ऐप करते हैं फिल्म एंसर से तो हुन नाम अनितर भाई Doe dat alstublieft, dat is lekker vlot te lezen. Weet ik meteen wie je bent. Hoor, ik ga ze even korten. En zeg alstublieft, ki tu mange ego chalta gana, ki ego rustige. Want ham je keuskerp, dat doet je aan het toch. Toen als het erin niet pop hoe jij, mijn pjade zin, hallo. Shalita Khemraj, pish kerta hoon.

या खेमरा जी और वो भी लतीता रेवती राम रूप को पेश करता हूँ पार्टी मिक्स ब्यूटीफुल एंड हेयर लक ट्रिनिटी पॉप हियर ऑन यू आर सैटरडे नाइट फीवर में

या रौती राम रूप मेरे प्यारे सुनो आलो वोड़ हेरलक सॉन्ग हेरलक गीत है प्रख्तक बीट ये मेरे जो पैर है मेरी जो शोला बदन है ये खुद ब खुद हिलने लगे हैं लेकर बीत दया रखा है नीट स्टिल सित तो मेरे प्यारे सुना आखिरी गीत इस घंटे का रखा उन्होंने इफ रुस्तक दून मैं तन रुस्तक नुमर

रखो नंबर, और आप लगातार व्हाट्सएप कर सकते हैं स्टूडियो में 02 3 9 9 9। लेकिन आपको मालूम पड़े कि जो लोग ऐप करेंगे इस वक्त दान सितुलिन ट्वेड ब्लॉक नाम लग ऑफ एग्लिक डेढ़ ब्लॉक फन 9 to 10 o'clock, ठीक है। एक आखिरी गीत, एक सी दत इट रायन नन इज फन द फॉर्मेसी गुड वाइब्स आउट सुरीनाम। तो इस गीत के साथ आप मजा ले मेरे प्यारे सुनने वालों, और आप मगन में हैं, एंजॉय करें भरपूर अपना वीकेंड। मिलते हैं ब्रेक के उस पार आप सभी से। रिमेंबर दिस इज यू आर, हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के लिए www.ujala.net।

नीले गगन के तले धरती का प्यार तले। मेरे प्यारे सुनो लो, ये उजाला रेडियो है, सैटरडे नाइट फीवर आप सुन रहे हैं। फिर एक बार तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे और प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर जब भी मौका मिलता है मुझे चले आते हैं और पांच घंटे लगातार आपका सेवा विद ब्यूटीफुल लोकल्स से हम करते हैं। घड़ी की तरफ मैं देखूं तो 11 मिनट गुजर चुके हैं, वो भी 8 बजकर। आप सभी प्रियजनों को वालों को फिर एक बार रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब है। ये प्रोग्राम का फॉर्मूला मेरे प्यारे सुनो, जो भी ऐप करेंगे स्टूडियो में उनके नाम से गीत हम चलाएंगे। हैप खदोल्ड ऑल स्टूडिफ हैप आल्टेड खदोल्ड, क्योंकि जिस तरह से ऐप आते हैं उसके हिसाब से भी लोगों के लिए गीत मैं चलाता हूँ। निमंत्रण के वफ़ूर व दुनिया खून क्यों रखो द फॉलो खोर द फन बिन को मंद एपिस

अरे मेरे ये कागज पंछी की तरह उड़ गए। मफराउ एंड मनेर बिहारी ब्रीडा एंजॉय कर रहे हैं अपना वीकेंड, मजा ले रहे हैं और आनंद भी ले रहे हैं नगमाओं के साथ हियर ऑन यू आर। तो आपके ऐप के लिए बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। गीत हमने तैयार करके रखा है केनत रखन जी के आवाज में। मैं नाम करता हूं ब्रेडा का, मफराउ एंड मनेर बिहारी जी और आप के साथ जितने भी लोग होंगे वहां उन सभी के लिए।

या केनत रखन मेरे प्यारे सुनने वालों, दीवाना हुआ बादल, खूबसूरत गीत रफी साहब जी का, जो शम्मी कपूर पर पिक्चराइज किया गया वो नगमा केनत जी ने गाकर सुनाए हैं आप तक, हमने बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ पेश किए हैं। हुए शम्मी कपूर के बाद तो मेरे प्यारे सुनोल, एक और शम्मी कपूर का मैशअप हमारी नजर में आए। गाने वाले हैं सुबी, और ये गीत जो है सुबी का गाया हुआ हम नाम करेंगे स्वाह में जो रहते हैं और तैयारियां कर रहे हैं एक पार्टी जाने के लिए। हेरवाल्डो और मारखरीद जी, हेरवाल्डो और मारखरीद उमद, थैंक यू लिवेल आपके ऐप के लिए। सुबी का गाया हुआ ये गीत आप दोनों के नाम, डार इन स्वाह।

या मिस्टर सुबी, मेरे प्यारे सुनने वालों, शम्मी कपूर का एक खूबसूरत मैशअप और ये गीत जरूर से जरूर आपको ले गए होंगे पुराने यादों की ओर, है ना। पता नहीं ये साल में शम्मी कपूर जी का प्रोग्राम हमने तैयार करके रखा है बैक टू द फ्यूचर में या नहीं, लेकिन बॉय ओ बॉय, आने वाले नए महीना का पहला दिन, केती कोती वाला दिन, इन यूली को पेश करेंगे रात्रि में प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर, और वो प्रोग्राम में एक ऐसा कलाकार का प्रोग्राम सजाएंगे जिनकी म्यूजिक जिस तरह से उन्होंने सजाए हैं, बनाए हैं, इतने सारे खूबसूरत गाने इनका है कि आप सुनेंगे तो भरपूर आप एंजॉय करेंगे। बस प्रोग्राम एकदम तैयार है मेरे प्यारे सुनने वालों, और कुछ हफ्तों के लिए उनका ही प्रोग्राम बनाएंगे, और किनका प्रोग्राम हम तो फिलहाल नहीं बताएंगे, आपको सुनने पड़ेगा, और वो भी गूंजता और आपको सुनने को मिलेगा बहुत बहुत सारे खूबसूरत गीत आनस्तान गूंजता। नतुलक डोंडा दाख को भी हम रहेंगे 2 तारीख, पहला बुधवार, पहला गुरुवार और पहला शनिवार नए महीना का आपका साथ हम देने चले आएंगे। अगले गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, जो हमने तैयार करके रखा है, वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स अब हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन इनकी आवाज बहुत खूबसूरत है और वे बैक सॉन्ग आप तक पेश करने जा रहा हूं, और इसे हम नाम करेंगे जो हार्लेम में रहते हैं, आइलिन डंकीवेल, चून करने के लिए, हमेशा सपोर्ट करने के लिए और आपके ऐप के लिए दिल से धन्यवाद। रामोन लक्ष्मण जी का गाया हुआ ये नगमा एक बार मुस्कुरा दो, मैं आइलिन के नाम करता हूं एट हार्लेम।

एक बार मुस्कुरा दे। ये था रामोन लक्ष्मण जी की आवाज। मेरे प्यारे सुनने वालों, बहुत पुराने एल्बम से हमने निकाले हैं पार्टी टाइम, ब्यूटीफुल। घड़ी की तरफ मैं देखूं तो मेरे प्यारे सुनने वालों, 2 मिनट तक गुजर चुके हैं और वो भी सरे 8:03 ऑफ द क्लॉक फन हाल ऑफ नीह। आप ही का मन चाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये। वीकेंड है मेरे प्यारे सुनने वालों, यहाँ भी दोस्तों हिती प्रेमियों के साथ कुछ हम खा रहे हैं एन लेकर कूल ड्रंकिस उकवै मुत डेज वरमत दोस्तान है ना। यहाँ पर आपको ऐप करना है और जो लोग ऐप करेंगे उनके नाम से गीत हम चलाएंगे। हेन टिटल्स दोर खेफ। मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको तो मालूम है हेन टिटल्स दोर खेफ नगमाएं हम चुन चुके हैं सभी लोकल्स से, मतलब ये कि गीत फिर से गाया गया है, सजाया गया है और हमारे ही प्लेलिस्ट से गीत निकाल कर आप तक पेश करेंगे आपके नाम से। नतुलक आप बता सकते हैं कि आप एक चलता गीत चाहते हैं या रुस्तमख। आपको ये भी मालूम रहे मेरे प्यारे सुनने वालों, अगर आप ऐप करेंगे दन से चिवर्स हैं लेकिन ब्लॉक किया फन या मिस्किन नो खिनत ब्लॉक किया फन नहीं खतो 3 मा अंदर्स वर्टत एक ना 3 यूर। कौनो कौनो जो नगमाए हैं जो हम चला रहे हैं, कुछ लंबे हैं कुछ छोटे हैं, तो उसके हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ। हम सिल्फेन में सुशीला चंद्रिका सिंह जी प्रोग्राम से आनंद ले रहे हैं और उनके साथ है उनकी बेटी, उनके प्रिय बेटी मालती जी। तो आप दोनों मजा ले, एंजॉय योर वीकेंड। और बेहद खुशी है हम कि आप दोनों फिर एक बार चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर। सैटरडे नाइट फीवर आप सुन रहे हैं। एंड एक साथ यूली ड्रिंक एरगंस ओपन पिक्चर एंड नेचुरलक इस साथ नेचुरलक ओक द बदुलिंग लेकर ड्रिंक फॉर कूलिंग सुकर। गनीते फन इट वीकेंड, गनीते फन एल्कार एंड एंजॉय दिस सॉन्ग। मोटी माला भोला सिंह जो गाएंगे, सुशीला चंद्रिका सिंह और मालती जी के नाम करता हूँ जो आम स्टल फीन में सुन रहे हैं प्रोग्राम।

क्लासिक मैशिक मेरे प्यारे सुनने वालों, ये मैशिप मोटीमाला भोला सिंह जी की आवाज में आप तक हमने पेश किया है हियर ऑन यूआर सैटरडे नाइट फीवर में। मेरे प्यारे सुनो, अगले एपर्स मैं देखता हूँ जो हमारे लिस्ट पर है। भैया जोनी कालीचरण अयोध्या रोटरडम। जोनी कालीचरण भैया जी हमेशा भी जब ही सुनते हैं मौका मिलते हैं तो एप करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसके लिए दिल से टंकीवेल धन्यवाद जोनी जी। एक हॉट बैठक हमने तैयार करके रखा है और कृष्णम छेजी जी का गाया हुआ जोनी कालीचरण के लिए अयोध्या रोटरडम।

भैया कृष्ण छेदी मेरे प्यारे सुनने वालों, और मुझे मालूम है आपके बदन में ये तो खौफ चलने लगे हैं। अगर आप इस पर हिलाएंगे स्केरमेस वाला बैठक गाना या, और वो भी इस टेम्परेचर में, बाप रे दादा। मेरे प्यारे सुनो, अगले गीत की ओर आपको ले चलते हैं, और गीत जो हमने तैयार करके रखा है स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह के लिए। हंस लक्ष्मण सिंह सुतमेर का हमारे प्रिय स्वागरी है, जो हमेशा भी सुनते हैं और जब भी सुनते हैं पावर करते हैं। उसके लिए दिल से धन्यवाद स्वाग। एंजॉय योर वीकेंड, और ये नगमा आपके नाम करता हूँ।

ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनो सेवा में जो पेश हुआ है इस घंटे का आखिरी गीत में पेश करने जा रहा हूँ मेरे प्यारे सुनो वालों एंड डन क्राई फॉर द ब्रेक फन नहीं है और 9 बजे के बाद बाकी एपर्स के लिए भी हम शुरू करेंगे गीत चलाने के लिए एंड ये मखनुख स्टेज एप मेरे प्यारे सुनो वालों ना द स्टूडियो 020-363-0808 उजाला रेडियो का स्टूडियो का व्हाट्सएप है आप अवश्य लगातार ऐप कर सकते हैं किरण किरार और मिलते हैं ब्रेक के उस पार

पारी करो रे पारी करो। काफी मशहूर ये नगमा, ये था सतीशवा नाठे। और स्टेशन का नाम उजाला रेडियो, मेरे प्यारे सुनने वालों, दैट इज वीकेंड, दैट इज शनिवार। और घड़ी की तरफ मैं देखूं तो 9 मिनट गुजर चुके हैं, वो भी 9 बजकर। मैं हूं आपका यारों का यार रतन राम दुलारे पांडे, लाइव एंड डायरेक्ट इवार की स्टूडियो रतनाम से पेश कर रहा हूं सैटरडे नाइट फीवर विद ब्यूटीफुल लोकल्स। मेरे प्यारे सुनने वालों, इतने सारे गाने रिलीज हुए हैं और कुछ हफ्तों के लिए भी मैं नहीं था, तो काफी नगमाएं चला रहा हूं लगातार जो रिलीज हुए हैं। और अगर मौका मिला मारा डेंगिक नीत मिस्किन वाला, तो एक दो पुराने लोकल्स भी सेवा में पेश करेंगे जरूर जरूर जरूर। रोटरडम में सुन रहे हैं प्रोग्राम राकेश और नताशा, ऐसे से लेकर उपस्थित भाई सुस सरिता। तो राकेश और नताशा एन सरिता और जितने भी लोग आप लोगों के साथ है, एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय योर सैटरडे, एंजॉय यू आर, एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर। और आपके अब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये नगमा आप सभी के नाम।

दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरी दिल पर मेरा ये एतबार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनने वालों, 020-363-0808 जहां पर आपको ऐप करना है अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नाम से मैं एक गीत लोकल चलाऊं। सुन रहे हैं इस वक्त अलमेर बैठू में स्वागरी राज नंदन और उनके साथ साथ भी आरती नंदन भी प्रोग्राम से आनंद ले रहे हैं। तो आप दोनों के नाम आरती और राज नंदन के लिए गीत तैयार करके रखा है। एंजॉय अ मूवी जैसी ब्लू स्टाइल डुएट सॉन्ग पेश करने जा रहा हूं।

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनने वालों, दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। 7 मिनट बाकी है मेरे प्यारे सुनने वालों, वो भी सरे 9 बजने में। एनथिस नोक्सटेज हॉटबर्ड, पता नहीं ये बारिश इधर रोतनाम में कब होंगे। We need it badly. सुना है कि हॉलैंड के साइड फराल ओस्त में हलचल हो रहे हैं या होने वाले हैं। Mensen, wees voorzichtig. En let goed op jezelf. Amrita's ka app aaye hai. Suriname, Nikeri se Amrita ka app aaye hai. और अमृता के नाम गीत हम चलाएंगे। अमृता बोले फोर मैन मन अली खान, तो अमृता फोर अली खान, ठीक है। खूबसूरत गीत हम चलाएंगे और ये खूबसूरत गीत जो हमने तैयार करके रखा है, द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागित हुसैन की आवाज़ फॉर अमृता एंड अली खान, आउट निकेरी सुरिनामा।

एक जान जुड़ाना होंगे, बस ये वादा रहा। उजाने जा खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, और फिर से सजाए हैं आपके लिए, गाए हैं द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागित हुसैन। अगले गीत के ओर आपको ले चलेंगे, विनोद भुंडी जी गीत गाएंगे मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये नगमा अल्फा नंदरायन का रहने वाली कमला जी के नाम करेंगे। कमला जी थैंक यू वेल आपके ऐप के लिए, एंजॉय योर वीकेंड एंड एंजॉय नेचुरल सैटरडे नाइट फीवर, और उम्मीद और आशा करते हैं कि ये गीत भी आप एंजॉय करेंगे जो आपके नाम से चला रहा हूँ। थैंक यू वेल फॉर योर ऐप ये कमला अल्फा नंदरायन।

फॉर्मेसी एलिगेंस मेरे प्यारे सिनेमालो विनोद भुंडी, चूम लूं होंठ तेरे दिल की ही ख्वाहिश है या मुंह है मेरे प्यारे सिनेमालो, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकल्स ओनली हियर सैटरडे नाइट फीवर में ऑन योर फेवरेट रेडियो उजाला रेडियो और प्रोग्राम लाइफ एंड आर की वार के स्टूडियो रतनाम से सजाया और बनाया जा रहा है। मेरे प्यारे सुनने वालों, हम आपको ले चलते हैं अगले गीत की ओर जो डनाख के मिका के लिए हम गीत चलाएंगे। डंकी वेल मिका फॉर ये अपियर और ऑलवेज सपोर्ट फेन दचवीर सोल सालते तफ्खस्तम बेंद एंजॉय योर वीकेंड और देवी जगमोहन की आवाज में गीत हमने जो तैयार करके रखा है प्रख्त खसंगरस उनकी आवाज में गीत मिका के नाम करता हूं। मिका डंकीवेल एंजॉय योर वीकेंड।

या देवी जगमोहन, मेरे प्यारे सुनने वालों, खूबसूरत आवाज उनकी और गीत उन्होंने फिर से गाए हैं, सजाए हीरो न्यू हार्ट, हमने आप तक बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ पेश किया है। मेरे यारों का यार प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और वो है दैनी लक्ष्मण सिंह और मीना जी। तो अमीना जी और डैनी, एंजॉय योर वीकेंड, चुली से लेकर खान वन लसी एक स्ट्रांड वासत नीत वार्म ऑफ नई बैड से सत लेकर कूल है मैं द ब्रीज। जिस तरह से हो आप भरपूर एंजॉय करें अपना सैटरडे, अपना वीकेंड। डैनी और मीना जी मनु वॉट ट्वेल डांसर, क्योंकि आप दोनों के नाम करता हूँ ये गीत प्राप्त खरीमिक्स दौर मैन कोलेखा डी जे ला फिएस्टा।

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे जेनोआलो, प्रख्तख डीजे रिमिक्स विद ब्यूटीफुल सॉन्ग्स मेरे प्यारे जेनोआलो। इस घंटे का आखिरी गीत पेश करने जाऊंगा मेरे प्यारे जेनोआलो, और इस आखिरी गीत के बाद हम 10 बजे के ब्रेक की ओर बढ़ चलेंगे, और उस ब्रेक के बाद मेरे प्यारे जेनोआलो सेवा में फिर हम हाजिर रहेंगे। एक अपनी सोफिल मेयर नाम ऑफ माई लाइफ, कुछ नाम और है लोगों जिन्होंने ये कश उठाए हैं ऐप करने के लिए, तो उन सभी के लिए जरूर से जरूर नतुरलक हम गीत चलाएंगे। और अभी तक आपको मौका दिया जा रहा है, आप ही चाहते हैं कि आपके नाम से गीत मैं चलाऊं, या तो मुझे एपिस्टर ना 020-363-0000 020-363-0000। इस घंटे का आखिरी गीत मेरे प्यारे सुनो वालों, आईफी जहांगीर के नाम करता हूं। आईफी जहांगीर जो आमस्टरडाम में रहते हैं, हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, पावर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए आईफी बहुत बहुत शुक्रिया, डंकीवेल। ये नगमा द किंग ऑफ हिंदी पॉप का गाया हुआ आपके नाम करता हूं, एंजॉय। और मेरे प्यारे सुनो वालों, मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनने वालों, अनिल भीम और कविता सुखू जी की आवाजें उजाला रेडियो पर आप चून किए हुए हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, और गीत रब मानिया आप तक हमने पेश किया है। घड़ी की तरफ मैं देखूं तो मेरे प्यारे सुनने वालों 9 मिनट तक गुजर चुके हैं और वो भी 10 बजकर। द लोकल्स चल रहे हैं, प्रोग्राम का नाम है सैटरडे नाइट फीवर। तमाम एपर्स के लिए गीत हम चला रहे हैं और अगले गीत जो हम पेश करने जा रहे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, वो है प्रिंसेस राज के नाम हम करेंगे जो रतनाम में रहते हैं। तो आपके ऐप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेल प्रिंसेस राज जी। ये गीत आपके नाम करता हूं एंड दैट इज नन अदर देन द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागी तुसैन।

द किंग ऑफ हिंदी पॉप मेरे प्यारे सुनने वालों, और अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे। सतिया के नाम एतम सदम, मेरे प्यारे सुनने वालों, सतिया के नाम गीत हम चलाएंगे। सतिया जी को हम कहेंगे डंकी वेल एप करने के लिए, और एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय योर वीकेंड। और गीत जो हम चलाने जा रहे हैं अभी दा रमजान और कुमार सानू की आवाजें फॉर सतिया।

मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, कुमार सानू द टाइगर और अबीदा रामजान जी की आवाजें हियर ऑन यू आर मेरे प्यारे सुनने वालों। और अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे, जो हम नाम करेंगे प्रभा जी के नाम। प्रभा जी अम सदम सिंत्रम आपके नाम करता हूं खूबसूरत गीत अन प्रख्त खमोय रिमिक्स मुंबा चिल रिमिक्स और बेहद खुशी है हम कि आप भी चून किए हुए हैं। एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय यू आर, एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर।

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनो वालों, ये मुंबा चिल मिक्स हमने जो आप तक पेश किया है। 5 मिनट बाकी है मेरे प्यारे सुनो वालों, सरे 10 बजने में, जबकि हम आपको ले चलेंगे मशहूर रामदेव चैतू का गाया हुआ एक नगमा, फिर से सजाया गया है, गाया गया है जोछना जी के जरिए। और ये गीत हम ने तैयार करके रखा है, पेश करेंगे हेर एंद्रू और चित्रा जी के नाम। एंजॉय योर वीकेंड चित्रा जी, एंद्रू जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। सैटरडे नाइट फीवर में जोछना का ये रामदेव चैतू का नगमा चित्रा जी और हेर एंद्रू जी के लिए।

तुम प्यारे तू कहां बसते है। जोशना जी की आवाज और गीत रामदेव चैतू जी उस्ताद, इनका नगमा जोशना जी ने फिर से गाए हैं सजाए हैं। रिमेम्बर दिस इज यू आर, मेरे प्यारे सुनो, मौका दिया जा रहा है अब तक, अभी तक आप के ऐप करने के लिए 0303 9000, लेकिन आपको ये भी मालूम रहे कि 11 बजे के बाद दंदराय वाली मसूल्स तो आज चलता नंबर विल दान कान एक नोख एन ऑफ ट्वे है मेर नी। लेसर शहर में सुन रहे हैं प्रोग्राम सांदर और सारदा, तो आप दोनों को हम कहेंगे शुभ वीकेंड, बेहद खुशी है हम कि आप दोनों चून किए हुए हैं। अगले गीत एक मैशअप है द 90s का, द फरमासी द टाइगर्स, और ये गीत सारदा और सांदर के लिए। थैंक यू वेल फॉर योर एपिया।

Beautiful mashup, mere pyare sunne walo. And that is the formatie The Tigers. The 90s ka ek khoobsurat medley sajaye hain aur aap tak bahut hi prem aur pyar ke saath humne pesh kiya hai. हमारे प्रिय सूरीनाम में भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, आनंद ले रहे हैं अनीता और फैसल. तो अनीता और फैसल के लिए गीत अगले हम पेश करने जा रहे हैं दविंद्र सिंह शिवनाथ और सविता सिंह की आवाजों में.

मैं भौरा तू है फूल, ये दिन मत भूल जवानी, ठंडा त्योहार जवानी लौट के आएगा ना। सविता सिंह और रविंद्र सिंह सिवना जी की आवाजें प्रख्त भलाय दौड़ माएस्त्रो ज्वाला उज्जला रेडियो है ये मेरे प्यारे सिनवालो। अगले गीत की ओर फारिस बरसाती सुरनाम का एक सिंगर और फंड फॉर्मेसी फॉर्म्स में द स्टार्स सिंध मार्त का पूनम और नरेश के लिए गीत हम पेश करने जा रहे हैं। फैन द चुलियो का फस्तम सैन पूनम जी और नरेश एंजॉय गीत फारिस बरसाती का गाया हुआ आप दोनों के नाम।

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनालो कॉकटेल का ये नगमा डुचको हमने आप तक पेश किया है। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं 11 बजे के और मेरे प्यारे सुनालो एक गीत हमने तैयार करके रखा है आइकॉन मैशअप फंड क्रिम्स शरवन की आवाज में। चलो हम पेश करते हैं।

या मेरे प्यारे सुनो, ये था शिवम राजा राम, सांस घरे ना साबुन के मारे। ये था इस घंटे का आखिरी गीत मेरे प्यारे सुनोलो। हम इंतजार में है ब्रेक के, और ब्रेक के उस पार आप सभी से फिर जरूर से जरूर हम मिलेंगे। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

सितारे का ब्यूटीफुल रिमिक्स मेरे प्यारे सुनो वालों सेवा में हमने आप तक पेश किया है। ये उजाला रेडियो है मेरे प्यारे सुनो वालों और हम आखिरी घंटे में ऐलान पड़े हैं। इट इज 8 मिनट ओवर द क्लॉक फन 11:08 गुजर चुके हैं और इस आखिरी घंटे में खावा अली मसूल सराय मेरे प्यारे सुनने वालों रोहित छेरी को हमने तैयार करके रखा है और इसे हम पेश करेंगे। दिल दे दिया है गीत का बोल।

रोहित छेदी मेरे प्यारे सुनो, रोहित छेदी की आवाज में डिफॉर्मेशन द स्टार्स। En we gaan even terug in de tijd. Bhishma Habir. Surahi Dar Gardan. Koyal Si Hai Awaaz. Remember, this is You Are, mere pyare sunwalo, Ujala Radio. Saturday Night Fever, aap sun rahe hain with the beautiful locals.

सुराहीदार गर्दन कोयल सी है आवाज, द सिंगर ऑफ रोमांस बीस महावीर। एंड दिस इज रेशमा, मेरे प्यारे सुनो, जाने कहां गए वो दिन।

करिश्मा की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, एन वखान सुरनाम डिफॉर्मेसी फ्रीस्टाइल, ये है सत्यम माता दिन मेरी भीगी भीगी सी, दिस इज यूआर मेरे प्यारे सुनने वालों, एंड इट इज 8 मिनट फॉर द क्लॉक फन हाफ 12 सैटरडे नाइट फीवर आप सुन रहे हैं।

सत्यम माता दिन मेरे प्यारे सुनने वालों, खूबसूरत गीत इन्होंने गाकर सुनाए हैं। एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स हमारे हॉलैंड किंडर अब हिस्सा लेंगे हमारे ये प्रोग्राम में। सागर मलिक, इंतहा हो गई इंतजार की।

0: सागर मलिक मेरे प्यारे सुनने वालों, और सागर मलिक के बाद मैं पेश करने जा रहा हूँ संजय योढ़ा।
1: शायरी
0: तू मेरी, शायरी तू मेरी,
1: तू है मेरी गजल।
0: अच्छा, एंजॉय मेरे प्यारे सुनने वालों।

संजय योढ़ा, मेरे प्यारे सुन लो, तू मेरी शायरी और तू है मेरी गजल। निसाम वागित हुसैन को पेश करता हूँ अब की बार प्रोग्राम में, कि दूरी ना रहे कोई। छह मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सिनवालो, सरे 11 बजकर। आप ही का मन चाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये सैटरडे नाइट फीवर। आप सुन रहे हैं

निजाम वागी तुसें दूरी ना रहे कोई। और ये है द लेजेंड नदीम खान, तेरे मेरे बीच कैसा है ये बंधन।

कल्याण केदार मेरे प्यारे सुनवालो। अब वक्त आ गया कि मैं आखिरी गीत पेश करूं मेरे प्यारे सुनवालो। आखिरी गीत आप सुनेंगे फन फरमासी द गुड वाइब्स। लेकिन गीत चलाने से पहले मेरे प्यारे सुनवालो आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। उम्मीद और आशा करते हैं कि जिस तरह से हमने ये प्रोग्राम को सजाए हैं आप सभी ने भरपूर भी एंजॉय किए हैं। अगले हफ्ते वो भी 4 तारीख जुलाई को ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर फिर हम पेश करेंगे। मेरे प्यारे सुनो रहा फूल तो फिर खिलेंगे और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज। आप सभी से फिर हम मिलेंगे वंस तक एंजली। टेक केयर और रिमेंबर आई लव यू ऑल।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।